0: नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बहता।
1: PM Modi also put a message on social media. The Prime Minister hailed the valor of the Indian Armed Forces and called Operation Sindoor a reflection of India's firm response against terrorism.
2: भारत आतंकवाद के खिलाफ जब भी कोई कार्रवाई करेगा तो आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए सरहद पार की जमीन भी सुरक्षित नहीं रहेगी।
1: Messaging was clear across the higher echelons of the Indian leadership. Defense Minister Rajnath Singh shared a video showcasing the valor of Indian Armed Forces. The Defense Minister called the operation a powerful symbol of national resolve and...

0: दुश्मन की धरती पर घुस करके आतंक की भेड़ काटस को मिट्टी में मिला दिया।
1: जो हमें छेड़ेगा हम उसे छोड़ेंगे।

0: दुश्मन की धरती पर घुस करके आतंक की भेड़ काटस को मिटे।
1: वो हमें छेड़ेगा, हम उसे छोड़ेंगे नहीं।

0: And Prime Minister Modi also put out a message on X. He hailed the valor of forces and called Operation Sindoor a reflection of India's firm response against terrorism.
1: भारत आतंकवाद के खिलाफ जब भी कोई कार्रवाई करेगा तो आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए सरहद पार की जमीन भी सुरक्षित।
0: डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ऑल्सो शेयर्ड अ वीडियो शोकेसिंग द वैलर ऑफ इंडियाज आर्म्ड फोर्सेस। ही कॉल्ड द ऑपरेशन अ पावरफुल सिंबल ऑफ नेशनल रिजॉल्व एंड प्रिपेयर्डनेस। Security forces have heightened alert levels along the line of control in North Kashmir, particularly in the sensitive Gurez sector, by expanding night operations, deploying advanced surveillance systems, intensifying patrols, and setting up additional checkpoints on the routes leading to border areas.

0: दुश्मन की धरती पर घुस करके आतंक की भेड़ काटस को मिट्टी में मिला दिया।
1: जो हमें छेड़ेगा हम उसे तोड़ेंगे नहीं।

0: दुश्मन की धरती पर घुस करके आतंकी स्टेटस को मिट्टी में मिला दिया।
1: जो हमें छेड़ेगा हम उसे छोड़ेंगे नहीं।

0: दुश्मन की धरती पर घुस करके आतंक की भेड़ काटस को मिट्टी में मिला दिया।
1: जो हमें छेड़ेगा हम उसे छोड़ेंगे नहीं।